है ये किस काम का, तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा है ये बस नाम का। आदमी तू आ गई आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का।

असली है आदमी तो वही राम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी के लिए जैसे जल और पवन,

चंद जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है

जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

0: जी दी रचना तो बाद हूँ मैं फरीदकोट बस्ती साड़ी शहर है सुखविंदर कौर जी सदा देने जा रहा वो आन ते अपनी रचना लैके हाजिर हूँ। सुखविंदर कौर जी इस बार साड़े कवि दरबार के जो आ रहे हैं वो बठिंडा के शायर कुलदीप सिंह मंगी जी की एक गजल लैके हाजिर हो रहे हैं। सुखविंदर कौर जी दुआबा रेडियो के हफ्तावारी कवि दरबार के निघा स्वागत है।
1: दोस्तों मैं सुखविंदर कौर फरीदकोट आप जी की नज़र मालवे की शान बठिंडे जिले का माण कुलदीप सिंह बंगी जो पेशे वजो एक अध्यापक ने उन्होंने लिखी हुई गज़ल आप जी सामने पेश कर जा रही हूँ। एक वारी जे झूठा ही तू दे जांदा तेरे वास कदे

के अड़िया लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू की दर्द नू जाने असी बहुता दर्द हंडा बैठे।

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया, हर कपड़ा सी रो रो के बोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर

मामे मासियां भूआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। मामे मासियां भूआ रोवण तेनू बरावण चाची ताई। भैन ने आनी बकरी पारोवे, भैन ने आनी बकरी पारोवे, जांदी नहीं बराई। चाचे ताए बाबल तेनू अणखां दी गठ फड़ाई। सोरे घर जातीए कर लई फर्जां दी कमाई। जा सोरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई। जा सोरे घर धीए लै जा लट्टां भरी विदाई।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

इस मिट्टी दे उत्ते खड़के तू कर दाए मनमानी, भला ना लोचे किसे दा बंदिया कर दाए नित हानी। मिट्टी सब कुछ चुप कर सहंदी रख दी।

फोटे कट्ठे कर ले अपनी झूठी शान दिखा तर बेसमेंट सब भर ले रजनीये नू पता नहीं लगना रजनीये।

असली है आदमी तो वही राम का। आदमी तू अगर आदमी ना बना तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी के लिए जैसे जल और पवन,

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का।

जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास

चन्न सितारे खुशियां केड़े नहीं आहे रास कदे। शीशे अगे खड़के जदवी चेता आया बीतदा बीत पल।

0: हारी गबरुआ हिम्मत ना हारी बेलोका।
1: सिंह दी रचना जिहड़ी कि जोगिंदर पाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साडे एक शायर ने उन्हां दी ती है सिमी सोतरा जी ओ दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी हुई एक जिहड़ी रचना लै के हाजिर हो रहे ने। सिमी सोतरा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोतरा जी जी आयां
2: लेके असी दिल विच आए आ जनून नी रद्द करवाने तेरे काले एक कानून नी लेके असी दिल

0: कॉलेज आओ कहता किसी डी से, मैं क्या, तू बेटा चंगी पढ़ाई कर ले, चंगे अपने सारे सोसाइटी नाल जुड़, डिसेंट सिटीजन बन जा, डीसी आप पे बन जाना है। सो बेसिकली डीसी बनना या सिविल सर्विस जाना एक बहुत ही एक मल्टी प्रॉन्ग चीज का एक प्रॉन्ग है। साढ़े को अगे करियर से इन्नी ऑप्शन ने, स्पोर्ट्स पर्सन ओलंपिक से तुम कुछ कर लो। असी देखिया 2016 के ओलंपिक के जेडे भी मेडलिस्ट है अजो कितने पहुंच चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: थोड़ी जी
1: बिल्कुल
0: मेहनत करके तुसी अपने देश का नाम किन्ना अगे ले जा सकते हो। तुसी किसी नू एक्टिंग का शौक होंगे, कोई बच्चा इस तरह का इनहेरेंट टैलेंट होंगे हैगा,
1: बिल्कुल
0: तुसी एक्टिंग
1: बिल्कुल है
0: लाइन से
1: ही
0: चले जाओ। सिंगिंग का शौक है अपने अपने ही एरिया च, किन्ने सिंगर तुहाड़े थ्रू
1: हाँ
0: मैनू पता
1: वाकई।
0: लग
1: हाँ
0: गया
1: जी हाँ जी
0: सीगा।
1: बिल्कुल जी
0: तो किसी दे कोई भी टैलेंट हैगा जे इहनू एक्सप्लोर करे माइंड दा, असीं बिल्कुल 5 तो 10% आपां एक्सप्लोर करते हैं, आपां माइंड
1: हाँ
0: होर
1: जी
0: एक्सपेंड करके एक्सप्लोर करिए, तुसी कितने दे कितने पहुंच सकते हो किसी भी लाइन दे विच।
1: बिल्कुल सर बहुत वधिया लग रहा है गल्लां-बातां करके। आपां एक छोटा जिहा ब्रेक लवांगे, ब्रेक तो बाद फिर आपां हाजिर होवांगे। दोस्तों स्टे ट्यून्ड, खुश रहो, चेहरे ते एक मुस्कान बना के रखो ते सुनते रहो प्रोग्राम। आपां हुणे दोबारा तुहाडी सेवा च हाजिर हुंदे हां।
2: जलंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित दशमेश गर्ल्स कॉलेज चक अल्ला बख्श मुकेरियां जिला होशियारपुर का कैंपस 6 एकड़ जमीन में फैलिया हुआ है, जिस विच बीए, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी फैशन डिजाइनिंग, बीए, बीएड इंटरग्रेटेड कोर्स 4 साला, इसके अलावा एमए हिस्ट्री, हिंदी, पंजाबी, म्यूजिक वोकल, पोलिटिकल साइंस, एमकॉम आदि पीजीडीसी कोर्स चल रहे हैं। विद्यार्थियों लिए आधुनिक ढंग नाल तैयार केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एसी कंप्यूटर लैब्स, आईसीटी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, म्यूजिक या लेबोरेटरियां मौजूद हैं। मेरिटोरियस अते यूनिवर्सिटी पोजीशन लेने वाले विद्यार्थियों नू मुफ्त पढ़ाई, वजीफे अते इनाम अते अनाथ विद्यार्थियों लिए फीसां विच रियायतां दित्तियां जांदियां हैं। विद्यार्थियों के खेडन लिए खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, गतका, एथलेटिक, बॉल बैडमिंटन ग्राउंड उपलब्ध हैं। स्मार्ट क्लासेस दी सुविधावां दित्तियां जांदियां हैं। लाइब्रेरी विच वख वख विषयां ते 52 जर्नल उपलब्ध हैं। विद्यार्थियां हर साल यूनिवर्सिटी विच वधिया पोजीशनां हासिल कर रही ने। जोनल इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल विच बेशुमार इनाम हासिल करते हुए कॉलेज ने होशियारपुर जिले विच सिक्ख्या दे खेत्र दे नाल नाल सभ्यताक खेत्र विच भी एक नवी पछाण बनी।
1: हाँ जी दोस्तों स्वागत है एक बार फिर ब्रेक तो बाद। आपां गल्लां कर रहे हाँ सिक्ख्या ते रुजगार प्रोग्राम तहत बच्चों का बेहतर भविख किवें बने। तो साढ़े नाल स्टूडियो में मौजूद ने डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी IAS जो बतौर SDM दसूआ विच तैनात ने, ते बच्चों के भविख में लैके फिक्रमंद ने, चिंतित ने, तो उन्होंने बहुत वधिया उसारू सीधा दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब आप जिवें पहला गल कर रहे थे कि पेरेंट्स के प्रेशर नाल बच्चा करे कुछ, जां कई बार वह पीयर ग्रुप्स अपने नाल दे दोस्तां नूं देखा देखी कि ताए दी धी चली ते मैं भी क्यों रवां कली, ते अपने दोस्तां ने उधर कोई ज्वाइन कर लिया उधर चल जांदे आ। इह किदां दा फैसला बच्चे जिहड़ा इहदा प्रभाव पै सकदा उहनां ते?
0: कई बारी इन्हां गल्लां दा चंगा प्रभाव पैंदा हैगा बच्चियां दे, कि कई बारी उहनूं कोई गाइडेंस देण वाला नहीं हुंदा, बट एक सपोर्ट सिस्टम तुहानूं जे मिल जांदा आइदर थ्रू पीयर ग्रुप और पेरेंट्स और टीचर्स, तां एक चंगे राह नूं तुर पैंदा जे उह पुल ऑफ कर सकदा हैगा। बट ये अल्टीमेट डिसीजन जदों 11वीं च होंदा बच्चा, 16-17 साल का होंदा, आपां टैलेंट की गल कर रहे थे बच्चों की,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: अल्टीमेट डिसीजन ये बच्चे का है, उस 16 या 17 साल के बच्चे का है, मुंडे या कुड़ी का है, कि वह उस फील्ड में एक कहते इंसाफ दे पाऊगा
1: हाँ
0: जी
1: जी हाँ
0: जी
1: जी हाँ
0: राह
1: जी
0: तुर पाया
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: जे उन्होंने लगता है कि मैं इन्नी मेहनत कर सकता है या मैं इन्हों इंसाफ दे सकता है, वो बिल्कुल उन्होंने उस लाइन में टो द लाइन जिन्होंने आप कहते हैं
1: हाँ जी हाँ
0: वो
1: जी
0: कर
1: हाँ
0: सकता है। जे उन्होंने लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ है, तो मैं सिर्फ देखा देखी आ रहा
1: उधर
0: हूँ,
1: आ गया
0: उस वेले देखो अकेला डिसीजन लेना कई कई बच्चे ले भी लेंगे ने,
1: हाँ
0: बट
1: जी हाँ
0: उस
1: जी
0: वेले अगेन जे उन्होंने कोई कोई सीधे राह पा दे जिन्होंने आप
1: जी
0: कहते हैं कि सीधे राह पाना,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: पेरेंट टीचर उन्होंने कह दे कि भाई दिस इज योर कैलिबर
1: ओके
0: कैलिबर तुसी ये कर सकते हो, ये तुहाडे तो नहीं हो सकता। जो उस वेले
1: जी
0: उन्होंने क्लियर क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाए तो उहदा काफ़ी जिहड़ा आने वाले जिहड़े साल है, इनफैक्ट आने वाला पूरा करियर उहदा जिहड़ा बन सकता है या बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल
0: इहदे विच
1: बिल्कुल
0: अगेन स्कूल च साडा एक सिस्टम जिहड़ा टीचिंग का सिस्टम हैगा
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: इन्ना
1: हाँ जी
0: स्ट्रोंग होना चाहिए है। टीचर्स नूं कई बारी नहीं पता होंदा कि अगर करियर दे विच बच्चे तो की कराना हैगा, थोड़ा उन्हां नूं भी ध्यान देना चाहिए अपने जिहड़े विद्यार्थी हैगे अपना, जिवें आपदा बच्चा होवे
1: हाँ जी बस
0: वो
1: उन्हें ही
0: समझ के
1: देना
0: जे
1: हाँ जी हाँ जी
0: उन्होंने काउंसल कर सकते हैं तो बहुत उन्होंने लिए वधिया
1: बिल्कुल
0: रहिंदा, वरदान साबित हो सकता है ये गल।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल जी ये तो गल ठीक है जी। जे उन्हां नूं मौके ते कोई गाइडेंस मिल जाए, तो एक आप आम सुनते रहने कि जिहड़े दूसरे देश आ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਸਮੇਂ